पार्थिवास एफएम समय सूचना यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले मध्याह्न 12 बजे

0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त दिक्षा?
1: के दिक्षा? को फुलीवाली? म कि बहिनी?
0: बहिनी त साली हो तिमी, त अनि मेरो फुलीवाली।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सानिया जहरा उनसे नाराज बैठी। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त चिक्का?
1: के विचार को फुलीवाली? म त बहिनी
0: बहिनी त साली, तिमी नै त मेरो फुलीवाली।